इंसान की एक बड़ी विशेषता है उसके विचार करने की क्षमता, जो दूसरे परजीवियों में नहीं पाई जाती है। जानवर भी पैदा होते हैं, खाते पीते हैं और एक उद्देश्यहीन जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इंसान जीवन की ऊंचाइयों को छूकर अपनी जाति और मानवता की सेवा करते हुए श्रेष्ठ जीवन जीता है। विचार करने की जो अनोखी क्षमता मानव को मिली है, इसका सही ढंग से उपयोग कीजिए। ऊंची सोच रखिए, आगे बढ़िए। यदि आप कुतुब मीनार के पहले माले से चारों ओर देखते हैं, तो आपको कूड़ा करकट यानी अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर के माले से चारों ओर देखते हैं, तो सुंदर सुंदर इमारतें दिखाई देती हैं। खराब चीजें आपकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। इसी प्रकार हमें अपने विचार और आचरण को हर रोज ऊंचा उठाना चाहिए, ताकि हमारा नजरिया उत्तम और व्यवहारिक बनता जाए और हम अच्छे जीवन के लिए उदार और सहनशील बन सके। अच्छा सोचेंगे तभी फल अच्छा होगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होते हैं हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आज साथ ही दांपाकलों भी आकाशवाणी के अरुण एफएम से हार्दिक स्वागत करती हूँ। सन 2026 जून महीने के आज 10 तारीख है और दिन है बुधवार। आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता बी बोरुआ। श्रोता, हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे देर और ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा के आरंभ करते हैं। श्रोता, आइए हम जानते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में 6 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 6:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज, 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत, 6:40 पर आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का समाचार, 6:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे और 7:10 पर प्रसारित होगा पथानी श्रोताओं का समाचार। सात बजकर 15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट, 7:35 पर तागिन श्रोताओं का समाचार और 7:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सदाबहार, 8 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात, 8:15 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर आप सुन पाएंगे शिलांग केंद्र से प्रसारित नोटिस न्यूज, 8:40

तो श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। अब आप बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति गीत और इसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे सुमन कल्याणपुर की आवाज में कृष्ण भजन।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में कृष्णा भजन। आपको बता दूं कि इसके साथ ही कार्यक्रम भक्ति गीत यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।

0: Si akaswani tanagara tanaga tamrogam jabam dolla lo yo folga lorina ne yirna rasoka kalome ken agoma melenjira menken menjina ngo gumar lendo tawang disiga disaster management department ka pera loka engine to ka na magom go jilen tu laga tawang to dung bago sibu gala tawang sibu ga isi ulen kotok ka tapamar pomna do kunam ne sirom siru ga nido do insa go tetap tapamar jikunam ma sipu silo ba talo de do amla chompuk pele ga sibu ru ru ga dun ga damne engine to ka amla bank engine tu sogo indian army itvf vr ro ga damne donam tinam ka do fani lo ka lemo to ka amla bempa dula कबर सगिम ने आर्ट साइंस ऑफ हिमालयन स्टडीज का साइंटिस्ट का द जिलेन टू गवर्नमेंट ऑफ टेक्सटाइल इन स्विस का निगम डली पवित्रा मार्गरेटा गालियालो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो लो फुलिक दोला जीरो हैंडलो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का लर्न हमने दिलिक जितो दोनालो लो निगम बर लोकल लाइवलीहुड का अभाव ने मेंटम दोला मोतम लोक यक्यरा मोगरेला फुटबॉल आइन मुरको पादे को इजाना कम दोला दोलोंगी गादम ने रेर मेरे नाम गरीब क्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का पहले लोग क्राफ्ट मोना ने मशीन ऑफ तू सके कोम जिलेन तातु अरुणाचल प्रदेश ऑफ अकेन चेचक राज्यसभा सीट लगा बा नॉमिनेशन कागज जिले को लोग निर्भय तय तक ने अतिर लोग रिलीज यारो दे दो अमला बीजेपी के निधन देव पार्लियन तुकु अमदाक तय तक ने रिलीज दे दो अमला नली तादर में अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ एआरओ लोंगमान रंगरंग मुनि दालेन तुर्म के अमदाक लुसिर फॉल का लोरे को लालो नी तारीख लोग का नीट क्वेश्चन पेपर लीक दाको का नीले तो पतक तुम नाम मनीषा मगारे ने दिल्ली का रोस एवेन्यू कोर्ट है बेल को नाम हमने बेल जिमा रहे हमला मेन पक जीतो सो के आखिर ना एक्यूज यास यादव अन्य छामी ना को मुझे हमने जुडिशियल कस्टडी लो दो तो लालियो फॉल सो के नीट एग्जाम हमने जिला दो हमला मेन पाता तो नीचे तो का दम ने मालेन तो का हमला डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का द FIRM ने जिले तो अरुणाचल प्रदेश ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट का द लोतु को रजिस्ट्रेशन कैंप को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले लोग का तवांग बी एम एम यू ट्रेनिंग हॉल लोदुम का तो सोगो याद ना को दोनों तीनों पुकने होटल दावा रेस्टोरेंट रिने का द मुनुक दोनों तीनों में ने अब आगे दम दरक अंपा बजीदू ना के अमला गवर्नमेंट गलो कातम तो का एमने में तदोला निदुम चैंपियन को बदो ने लो फुलिक तो सो को सेल्फ हेल्प ग्रुप मदर किचन और लोकल लुप्तिस मोने का दुकान फुलिक ला रजिस्ट्रेशन हमने मोगे बा नोटिस मोको सो के तमी मिली हमने गेमो माबजू हमला राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का साइंस पिकल थी का द नामसाई डिस्ट्रिक्ट का फार्मर्स का हमने मिली को और का हम दो लालो रे ने कम रोइंग और का पपुम पारे हम कम मिली हमने और तारे हम तो मिली और नाम सिगिम ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का डीन फैकल्टी डॉक्टर संदीप जग्गू का आरालो रगदूना के मदाक तनगा दुन गलो में के नगम सिन आकाशवाणी ईटानगर लोक तफादु निर्जुलिग नरिश लोक लोरिगो ब लोदुम नाम कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप अमला फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी गद का ट्रेनिंग ओक मबुक मचे आपतम नाम ने सिलो लोपिन रकु अब्दुल मेंकेन जीतो दोनालो लो इंडियन आर्मी का गजराज कोर्प्स गाद चामरु आउंगोला चामगो को एनसीसी कैडेट फ्रीकुम ने गादम ने दो यूनिटों में का मेंटम दूला बॉर्डर टो का काठेना मोदी गोन टो कमजीन दलेक देखे तो आप ने साकोट टीआरजी 42 स्नेफर एसआईजी 716 राइफल ओके एलएमजी एमकॉम कातम तो गालो अलो लो दापोरिजो का जेटफी सिग्नली ज्योति सिकम डिस्ट्रिक्ट गनरो जेटफीएम पीआरआई वीडियो ओकर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स गादम ने जेटपीसी के कॉन्फ्रेंस हॉल गोकुम तुला दिन सिना कबा को दुकुम कतो कबा दो दाग लोफियारे गादम ने ग्रासरूट लेवल लोक अगर हम काकेन बगर गतो का अंदुला डिस्ट्रिक्ट का योरा डेवलपमेंट स्कीम का दो दगम कम अलब कागरेरा रिला मत को अंदुला गवर्नमेंट का फान जिले नाम हमने आबार को सिन तोलो बोलो नेमो तमा बा डिस्ट्रिक्ट सिगम ने काकेन दबा गवर्नमेंट का नाम नासु लोक मोना तो का अमला मेंटन तातो मेट्रोलॉजिकल सेंटर इथानगर पापुम पारे वेशांग लोअर दिबांग वैली सियांग लो निदो तीर्थ बोदे तो अमला मेंपा जीतो ओके कुदा करादादी लोअर सियांग लपरदा नाम साइलो दोरदोगुम तीर्थ बरदे तो अमला मेंकेन जीतो क तने का दशरो का लो मेंकेन आगो म अग तन का दम लकेंगो ता रोगम जाब अब्दुल्ला सिरगो का गलो फेगो यु गम ने गोर अब्दुल्ला खजुमनो बीजेपी कार्यकर्ता निर्मल दगले दोजी सीएमई डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज ओके निर्मय तोमी हैदर लफरा दा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मुनिक लोक बीजेपी न्यूरी गोला न्यूनी गवर्नमेंट अरा लोक अगर रिनाम लोक तका लजो
1: रेडियो तान नारुआ मागाम ngon nerme mariyo mate akashvani itanagar ok arun fm 103.1 megahertz ga ara lo hilo special ruba bharatiya janata party bjp ga karyakarta ba ilyena sir dagle doji me bjp district insars ceo mi lok ok sri tomi haidar bjp district insars le parada lok munjam ada ruba tom tu nam nunjam sar nunjam mok tom dum nam ga lega lega ja ku nguga arunachal pradesh hogo ija काका कुन म अनि न्यू इगोल न्यू निगो बिका कु बीजेपी के गवर्नमेंट आन म कुई एम आरो को कु बकु इजा यो यो बेंगु ग अरुणाचल

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गालोशियाताओं का समाचार। गालोशियाताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुप्रभात। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। कल की चिंताओं को पीछे छोड़िए और आज को मुस्कान के साथ अपनाइए। आपके विचार सकारात्मक हो, आपका मन शांत रहे और आपका दिन सफलता, खुशियों और नई ऊर्जा से भर जाए। दोस्तों, याद रखिए, छोटे छोटे सकारात्मक कदम ही बड़े सपनों को सच बनाते हैं। इसके साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। इस सेगमेंट पर हम बातें करेंगे हेल्थ से जुड़ी कुछ खास बातें और आपके लिए प्ले करेंगे कुछ खास बेहतरीन गीत। तो कार्यक्रम में सबसे पहले हम हेल्थ से जुड़ी बातों से पहले आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी गीत। और फिल्मी गीत में आपके लिए पेश है पहला गीत फिल्म गैंगस्टार से। गीत के बोल है लम्हा लम्हा और इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत जेम्स की आवाज में फिल्म गैंगस्टर से। आपको बता दो कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम में सुबह सवेरे में और मैं हूँ आपके आज साथी दांपत। अब चलिए श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिव अपने दिन को हम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं उसके ऊपर चलिए कुछ खास बातें करते हैं। उसके बाद फिर आपको ले चलेंगे फिल्मी गानों के सफर में। दोस्तों अगर आप दिन की शुरुआत थोड़ा सोच समझ कर करते हैं तो पूरे दिन प्रोडक्टिव रहना काफी आसान हो जाता है। एक प्रैक्टिकल रूटीन कुछ इस तरह हो सकता है, समय पर उठे। हर दिन लगभग एक ही समय पर उठने की कोशिश करें, इससे बॉडी क्लॉक स्टेबल रहती है और एनर्जी बेहतर मिलती है। और साथ ही जब आप उठे हैं एक दो ग्लास पानी पीजिए। रात भर के बाद बॉडी को हाइड्रेशन मिलता है पानी पीने से। और फोन तुरंत ना देखें, पहले 30 मिनट सोशल मीडिया या नोटिफिकेशन से दूर रहने की कोशिश करें। इससे आपका फोकस दूसरों की प्रायोरिटीज पर नहीं अपनी प्रायोरिटीज पर रहता है। और साथ ही आप हल्का एक्सरसाइज या वॉक भी कर सकते हैं, 10 से 30 मिनट स्ट्रेचिंग, योगा या वॉक करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन और अलर्टनेस बढ़ती है। दोस्तों दिन के 3 सबसे जरूरी काम कीजिए, सिर्फ 3 हाई प्रायोरिटी टास्क चुनिए, सबसे मुश्किल या इम्पोर्टेंट काम पहले करने की कोशिश करें। और साथ ही अच्छा ब्रेकफास्ट, प्रोटीन और न्यूट्रिश फूड्स को इंक्लूड करें। बहुत ज्यादा शुगरी ब्रेकफास्ट से बचना बेहतर होता है। और कुछ मिनट प्लानिंग या आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, प्रेयर या जर्नलिंग कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होता है, मन शांत और फोकस रहता है। और साथ ही आप टाइम ब्लॉक्स बनाइए, काम को छोटे छोटे फोकस सेशंस में बांटिए, जैसे 20 मिनट फोकस और प्लस आप छोटा ब्रेक भी ले सकते हैं, मल्टीटास्किंग काम करें। दोस्तों याद रखिए कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं बल्कि सही काम पर लगातार प्रोग्रेस करना है। अब चलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसी मॉर्निंग रूटीन प्रोडक्टिव रहने में मदद कर सकती है, जैसे उठने के साथ आप सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठें अपना शेड्यूल के हिसाब से। और उठने के साथ आप 1-2 ग्लास पानी जरूर पीजिए और साथ ही फोन और सोशल मीडिया को कुछ देर के लिए अवॉइड करें। और साथ ही स्ट्रेचिंग, योगा या हल्का वॉक, इससे दिमाग ज्यादा अलर्ट रहता है। और साथ ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आज क्या पढ़ना है उसके 3 सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट्स लिखिए, जैसे मैथ्स के 2 चैप्टर्स रिवाइज करना, साइंस के नोट्स कंप्लीट करना, 20 एमसीक्यू सॉल्व करना। दोस्तों सुबह दिमाग फ्रेश होता है, इसलिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पहले पढ़िए। पढ़ते वक्त आप अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद रखिए, इससे आपकी फोकस बढ़ती है। और अगर आप पढ़ाई को 40 मिनट के सेशंस में बांटेंगे तो आपको इससे बहुत फायदे होंगे। रोज थोड़ा रिवीजन जरूर कीजिए, रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लीजिए। दोस्तों अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह का पहला स्टडी सेशन सबसे टफ सब्जेक्ट मैथ्स फिजिक्स रीजनिंग को दीजिए, इजी सब्जेक्ट को बाद में रखिए, क्योंकि सुबह दोस्तों बहुत फ्रेश होती है और सुबह हमारा दिमाग जो है सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं। तो अब चलिए कार्यक्रम में आगे चलते हुए आपके लिए पेश कर रहे हैं नॉन स्टॉप फिल्मी गाने फ्रॉम द फिल्म चलते चलते। और ये के बोल है सुनोना और इस गीत को आवाज दी है अभिजीत बच्चारे ने।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम में सुबह सवेरे यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आप बताने श्रोताओं का समाचार।

0: Splint's Life Pugo Ho, Sasagasa Pugomi, Lokola, or Amis Paika, Mu Pestal, Wefon Donum Lami, Kakina, Kakimila Mubla Mutu, Seka Training, so NC Atantre, Torolo Dapa, Lahela, Alengo Hepa, Anyala, Hohrakube, local students Atantre Dabola Mutu, Seka Training, so Molumi, 716 Rifles, Sako TRG, 42 Snappers, Les MLM, LMG, Advanced Thermal Surveillance Systems, Mulami, Kakimila Mubla Mutu. Coordinations come interactions meetings ako JPC conference holds Daporija under chairmanships JPC Srimati Jyoti Sikoms ka bupu hokla meeting me dugla hoka JPMs members secretaries panchayats raj institution PRIs or BDS dunyan atami meeting dugla mate JPC hoka meeting hoka abola ka munyan atami moluka kamale mi ayapa mpebila myodmyolo ho mulumba bila Atoka ka kam ni mi transparency mi kakim bila mui bila moto te hela moda lio ke tonsa kenyo la mui bila mute papun pare siang wai siang so divang beli disik so mudoyashi yapungela urolo rapa mula mune do hela lupala MCI dai hokul yalo alert bilila mudo hohara hube apar siang sla is siang dai mite mudoyashi yapungela uropa mune do la hela lukola mudo so kapulok san ham kane
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आपातकालीन श्रोताओं का समाचार आपातकालीन श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जहां होती है दिल से दिल की बात

0: संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट और इस सेगमेंट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ खास बेहतरीन हिंदी फिल्में गीतों और समाचारों के साथ। लेकिन इससे समाचारों से पहले आपको सुना रहे हैं फिल्मी गाने, और फिल्मी गानों में आपके लिए सबसे पहले पेश है यस बॉस फिल्म का गीत। गीत के बोल है छुरी बजी है और इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

दोस्तों, इस फिल्मी गाने के बाद अब चलिए कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में नजर रखते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। दोस्तों, राजधानी ईटानगर के समाचार पत्रों की सुर्खियों की पहली सुर्खी है, ताईतागक सेट फॉर राज्यसभा। मंगलवार को जांच के दौरान अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार ताईतागक के नामांकन पत्र सही पाए गए। अरुणाचल प्रदेश के द्विवार्षिक चुनाव के लिए सही पर्यवेक्षक पवन कुमार सेन और संयुक्त सीईओ ली केन कोयू की देखरेख में मीना और एआरओ लॉन्गमैन रोनरांग ने यहां विधानसभा सचिवालय के नोक में निम्ति हॉल में जांच पड़ताल की। चुनाव 18 जून को होंगे। यूनियन मिनिस्टर हाईलाइट अरुणाचल कल्चर हेरिटेज। केंद्रीय मंत्री पवित्र मैक्रीटा ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश को भारत की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्थानीय परंपराओं को बचाने की दिशा में हुई प्रगति की तारीफ की और क्षेत्र में अहम डेवलपमेंट और टेक्सटाइल प्रोजेक्ट्स लाने में राज्य के सांसदों की भूमिका को सराहा।

लोअर सुबनसिरी जिले के दौरे के दौरान बनकरों, हस्तशील कारीगरों और जिला अधिकारियों को संबोधित करते हुए विदेश और टेक्सटाइल राज्य मंत्री मार्गरीटा ने कहा कि देश की सांस्कृतिक पहचान में अरुणाचल का एक खास स्थान है। उन्होंने पारंपरिक शिल्प और स्थानीय आजीविका को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। विलेज सेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडर्न इरिगेशन प्रोजेक्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण के तहत पूर्वी सियांग जिले के लेटुम गांव में एक सिंचाई योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार की योजना के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए जल संसाधन विभाग WRD के पासीघाट डिवीजन ने मंगलवार को लेडुम गांव के कम्युनिटी हॉल में एक जागरूकता कैंप आयोजित किया। इस कार्यक्रम में राज्य के नोडल अधिकारी, जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी, विभागों के प्रमुख, HODs, PRI, नेठा गांव के अधिकारी, गांव बुरा और स्थानीय किसान मौजूद थे। जीरो वैली साइकिल्स फॉर हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के मौके पर मंगलवार को अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन ACA के तहत लोअर सुबनसिरी साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित आपातानी हेरिटेज विलेज राइड साइकिलिंग इवेंट के दौरान लोअर सुबनसिरी जिले की जीरो घाटी का शानदार नजारा जीवंत हो उठा। हेल्दियर और ग्रीनर भविष्य की ओर पेडल की टीम पर पेडलिंग करते हुए पर्यावरण की स्थिरता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए। तो दोस्तों, ये थे राजधानी ईटानगर के प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब चलिए कार्यक्रम में आपके लिए पेश है नॉन टॉक फिल्मी गाने। दोस्तों, फिल्मी गानों में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत कलयुग फिल्म से, और गीत के बोल है जिया दरक और इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान ने।

0: Soga, abuelo, aparecían West Coming District Lukan, yo donga, chala bholo te dula, me pada duku. Karada di Luar Subansri, Luar Siang, Leparada Luhit Namsai, Okalongding District Luka, Lula Anjao District Luka, yo donga, chala bholo te dula, me pada duku. Seruga tagen gambo ini bintam sengka herbo.
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे थागिन श्रेताओं का समाचार। थागिन श्रेताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब कुछ ही पलों में आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, कार्यक्रम सदाबहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेगमेंट पर आप जुड़ेंगे मेरे साथ मौसम के अपडेट्स और बेहतरीन फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले नजर रखते हैं आज की वेदर अपडेट्स की ओर। दोस्तों, आज ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में आज 10 जून को मौसम मुख्य रूप से बादलों से घिरा रहने और बीच बीच में बारिश बौछारें रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दोस्तों, आज के लिए मुख्य अपडेट है हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। नमी यानी ह्यूमिडिटी काफी अधिक रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान है। अगर आप बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना उपयोगी रहेगा। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए पेश है नॉन स्टॉप फिल्मी गाने और फिल्मी गानों में आपके लिए पेश है फिल्म डिस्को डांसर से। दोस्तों, डिस्को डांसर जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने जिमी का किरदार निभाया था। जी हाँ, बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी और इसे बब्बर सुभाष ने डायरेक्ट किया था। इसका म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिया था। गीत जैसे आई एम ए डिस्को डांसर, जिमी जिमी और याद आ रहा है जैसे गाने आज भी मशहूर हैं। फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पुराने सोवियत यूनियन में भी जबरदस्त हिट हुई थी। वहां मिथुन को लोग जिमी नाम से पहचानने लगे थे। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया और उनकी डांसिंग स्टाइल को बहुत पॉपुलर कर दिया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली पहली इंडियन फिल्मों में से एक थी। फिल्म की कहानी एक गरीब स्ट्रीट परफॉर्मर के सुपरस्टार बनने की जर्नी पर आधारित है। आज भी जब 1980s के बॉलीवुड म्यूजिक और डांस की बात होती है तो डिस्को डांसर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो फिर है गीत डिस्को डांसर फिल्म से बप्पी लहरी की आवाज में।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत फरबती खान की आवाज में फिल्म डिस्को डांसर से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम सदाबहार में और हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम सदाबहार में। और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश है गीत हरे रामा हरे कृष्ण फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत।

0: दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र और शिलोंग केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेच पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेत्रित्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन राजनीति और सार्वजनिक

0: वैज्ञानिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
5: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोह मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,00,000 रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi becomes longest serving elected Prime Minister of India. World leaders hail Prime Minister Modi's transformative governance and advocacy for Global South. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruthuraj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days. Making him the longest-serving elected prime minister in India's history. More details on this from our correspondent.
8: The achievement of Prime Minister Narendra Modi is particularly noteworthy given the scale and complexity of governance in India, a nation of over 1.4 billion people characterized by extraordinary diversity in language, culture, religion and geography. At a time when many countries have witnessed political churn, frequent changes in government and policy uncertainty, India has experienced continuity in leadership and governance. It reflects sustained public trust over three consecutive national mandates in the world's largest democracy. Independent global surveys have consistently ranked Prime Minister Modi among the world's most popular democratic leaders. He has also been conferred with the highest civilian honors of more than 30 countries. Prime Minister Modi's rise from a humble socio-economic background to the highest elected office without the support of a political dynasty is widely seen as an illustration of the opportunities and social mobility offered by India's democratic system. During Prime Minister Modi's tenure, nearly 250 million Indians moved out of multidimensional poverty and people saw rapid expansion of digital public infrastructure, large-scale infrastructure development, improvements in welfare delivery and broad-based socio-economic progress. During this period, India has strengthened its position as the world's fastest-growing major economy, concluded major trade agreements with leading economies and emerged as a more influential voice on global issues, including development, technology, climate action, and the priorities of the Global South. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
7: World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. We have a report.
9: World leaders have hailed Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anura Kumar Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. He also highlighted India's remarkable economic and social transformation and noted that Prime Minister Modi's vision has inspired many beyond India's borders, including Sri Lanka. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in a personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership.
10: Hello and greetings from Papua New Guinea to my friend Prime Minister Modi. Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous Prime Minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving Prime Minister of India. India remains a friend of Papua New Guinea. You personally have come here. I give respect to you as a senior leader Capital South, and I am happy that you have now a whole record as the longest serving Prime Minister of India.
9: Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, also highlighted Prime Minister Modi's journey from humble beginnings to leading a nation of 1.4 billion people across three terms and underscored India's significant achievements in foreign policy, economic growth, infrastructure and socio-economic development. With Anupam and Rishu's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
7: A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र और शिलोंग केंद्र से प्रसारित समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण FM है, जहाँ होती है दिल से दिल की।

दोस्तों कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेगमेंट पर आप जुड़ेंगे मेरे साथ कुछ खास इन्फॉर्मेशन और फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले नजर रखते हैं क्यों खास है आज का दिन, उसके तुरंत बाद आपको लिए चलेंगे फिल्मी सफर में। दोस्तों आज 10 जून का दिन भारत के इतिहास में कुछ खास घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्मदिन के लिए याद किया जाता है। भारत में 10 जून की कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1968 में भारत ने पहली बार इंग्लैंड को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट मैच में हराया था। ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और 1955 में भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का जन्म हुआ था। वे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। 1908 में जयंतो नाथ चौधरी का जन्म हुआ था, जो भारत के 6th आर्मी चीफ रहे। और 1938 में प्रमुख उद्योगपति राहुल बजाज का जन्म भी 10 जून को हुआ था। दोस्तों और दुनिया के इतिहास में 10 जून 1967 में 6-day वार समाप्त हुई थी इस दिन। और इसी दिन 1940 में बेनिटो मुसोलिनी ने इटली को वर्ल्ड वॉर टू में शामिल किया था। दोस्तों और आज 10 जून को नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे भी मनाया जा रहा है। जी हाँ, नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे हर साल 10 जून को मनाया जाता है। इस दिन हर्ब्स जैसे तुलसी, पुदीना, धनिया और स्पाइसेस जैसे हल्दी, जीरा, इलायची, दालचीनी के स्वाद, पोषण और सांस्कृतिक महत्व को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों हर्ब्स और स्पाइसेस में अंतर होती है। हर्ब्स आमतौर पर पौधों की पत्तियां या हरे हिस्से होते हैं, जैसे पुदीना और तुलसी। स्पाइसेस बीज, जड़, चाल या फूल के हिस्सों से मिलते हैं, जैसे हल्दी, लौंग और दालचीनी। अब चलिए कार्यक्रम में और आगे जानते हैं भारत के लिए ये दिन क्यों खास है। दोस्तों भारत दुनिया के सबसे बड़े मसाला उत्पादकों और उपभोक्ताओं में एक है। हल्दी, काली मिर्च, इलायची, जीरा और लौंग जैसे मसाले भारतीय भोजन और आयुर्वेदा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों इस दिन हम क्या कर सकते हैं, नए मसालों या हर्ब्स के साथ कुकिंग ट्राई कर सकते हैं। घर में तुलसी, पुदीना या धनिया उगाए, अपने पसंदीदा मसाले के बारे में जानिए और उसके फायदे समझिए, और साथ ही पुराने मसालों की फ्रेशनेस चेक करके उन्हें रिप्लेस करें। कुछ लोकप्रिय भारतीय मसाले और उनके फायदे जैसे हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए मशहूर, इलायची सुगंध और डाइजेशन में मदद, जीरा पाचन में सहायक और दालचीनी ब्लड शुगर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई मानी जाती है। दोस्तों आज 10 जून को अगर आप अपनी रसोई में हल्दी, जीरा, धनिया या इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी इस दिन की भावना को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, अब चलिए कार्यक्रम में आगे चलते हैं और आपको सुना रहे हैं नॉन स्टॉप फिल्मी गीत। और फिल्मी गीत में आपके लिए पेश है पहला गीत फ्रॉम द फिल्म कबीर सिंह। गीत के बोल है तुझे कितना चाहे, और इस गीत को गाया है जोविन नौटियाल ने।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर में और मैं हूँ आपके आरजे साथी दांपाक। अब चलिए श्रोताओं कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं फिल्मी गीत। गीत के बोल है सच कह रहा है दीवाना, जो कि 2001 की फिल्म रहना है तेरे दिल में का सबसे यादगार गाना माना जाता है। इस गाने की कुछ खास बातें दोस्तों, गाना मशहूर सिंगर केके ने गाया था। उनकी दर्द भरी आवाज इस गाने को अमर बना दिया। इसका म्यूजिक हरीश जयाराज ने कंपोज किया था और लिरिक्स समीर ने लिखे थे। फिल्म में यह गाना आर मदावन के कैरेक्टर मेदी के दिल टूटने और इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है। इसे गाने के बोल और फीलिंग लोगों के दिल को छू जाते हैं। गाने की लाइन जैसे दिल ना किसी से लगाना, हार्ट ब्रेक और बेवफाई के दर्द को बयां करती है। इसी वजह से ये 2000 के सबसे पसंद किए जाने वाले सैड रोमांटिक सॉन्ग्स में गिना जाता है। फिल्म रिलीज के वक्त एवरेज हिट थी, लेकिन बाद में कल्ट क्लासिक बन गई और इस गाने की पॉपुलैरिटी सालों तक बनी रही। आज भी जब लोग केके के बेस्ट सॉन्ग्स की बात करते हैं तो सच कह रहा है दीवाना का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बहुत से म्यूजिक फैंस इसे उनकी सबसे इमोशनल परफॉर्मेंस में से एक मानते हैं। अब चलिए आपके लिए पेश है यह गीत।

0: दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हेलो ईटानगर यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रधानमंत्री की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मीना, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जो होर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। पुरुष क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बातें करेंगे फिल्मी दुनिया से जुड़ी चटपटे बातें और गॉसिप्स, और साथ ही आपको सुनवाएंगे बेहतरीन फिल्मी गाने। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले नजर रखते हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के साथ। दोस्तों बॉलीवुड में इस हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स और गॉसिप्स काफी चर्चे में हैं। नई फिल्म अनाउंसमेंट्स और रिलीजेस दोस्तों देखे तो नवमी का सारण अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म में वेदांग रैना के ऑपोजिट नजर आएंगे। इस रोमांटिक ड्रामा को लेकर इंडस्ट्री में काफी वज है।

और सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 का टाइटल बदलकर बटवारा 1947 कर दिया गया है और इसका फर्स्ट लुक भी रिलीज हुआ है। राजकुमार राव की नई फिल्म प्रहार द उज्ज्वल निकम स्टोरी अनाउंस हुई है। और बॉक्स ऑफिस अपडेट देखिए तो वरुण धवन की फिल्म ये है जवानी तो इश्क होना है बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रही और ओपनिंग कलेक्शंस धीमे चल रहे हैं। दोस्तों सेलेब वॉच में हम देखें तो शाहरुख खान को उनके बेटे अब्राहम खान के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। साथ ही उनकी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है और अनुष्का शर्मा के मॉडलिंग डेज से जुड़ी एक पुरानी बात सामने आई है जहां फैशन डिजाइनर ने बताया कि उन्हें करियर के शुरुआती दिनों में बुलिंग का सामना करना पड़ा था। और इंडस्ट्री गॉसिप में हम देखें तो हर्षवर्धन कपूर ने एक्टिंग से ब्रेक लेने की अफवाह को गलत बताया और कहा कि वो एक एक्सट्रीमली यूनिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और कंगना रनौत ने अपनी फिल्म भारत भाग्य विधाता और सोशल मीडिया कमेंट्स को लेकर फिर से हेडलाइंस में है। दोस्तों इस हफ्ते ट्रेंडिंग में है एआई जनरेटेड बॉलीवुड हैरी पॉटर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रणबीर कपूर सैफ अली खान और विद्या बालन को हैरी पॉटर यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों बॉलीवुड की आज 10 जून की कुछ बड़ी अपडेट्स। सनी देओल की फिल्म नाम बदला गया है। लाहौर 1947 का ऑफिशियल नाम अब बटवारा 1947 कर दिया गया है। आज इसका मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है। फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा और करण देओल नजर आएंगे। फिल्म अगस्त 2026 में रिलीज होगी। और शाहरुख खान की किंग चर्चा में है। शाहरुख खान अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म किंग की शूटिंग और प्रोडक्शन में बिजी है। फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में काफी एक्साइटमेंट है और रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिसमस 2026 में रिलीज होने का टारगेट किया गया है। मनोज बाजपेयी की नई फिल्म गवर्नर के मेकर्स ने 1990 स्टाइल टिकट प्राइसिंग कैंपेन अनाउंस किया है जो फैंस का ध्यान खींच रहा है। और दोस्तों 2026 को कास्ट का साल कहा जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स का मानना है कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की बड़ी फिल्मों की वजह से 2026 बॉलीवुड के लिए खास साल बन सकता है। बॉक्स ऑफिस बज में देखें तो वरुण धवन की रोमांटिक कॉमेडी है जवानी तो इश्क होना है भी सिनेमा हॉल्स में चर्चा में बनी हुई है। अब चलिए कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आगे चलते हैं और सुना रहे हैं आपको फिल्मी गीत फ्रॉम द फिल्म अकेले हम अकेले तुम। और दोस्तों गीत के बोल है ऐसे जख्म दिया है और इस गीत को गाया है आमिर खान और उदित नारायण ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे एक गीत उदित नारायण और उनके बेटे आदित्य नारायण की आवाज में फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी गपशप में और मैं हूं आपके आज साथ ही दांपक। दोस्तों अब चलिए कार्यक्रम में और आगे चलते हुए नजर रखते हैं बॉलीवुड अपडेट्स पर। दोस्तों लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स में शाहरुख खान की किंग बर्थ काफी चर्चे में है। शाहरुख खान अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म किंग की शूटिंग में बिजी है। फिल्म का रिलीज 25 दिसंबर 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड है। फैंस में काफी हाइप है क्योंकि SRK इस बार एक इंटेंस एक्शन अवतार में नजर आएंगे और साथ ही आमिर खान अपनी प्रोडक्शन फिल्म लाहौर 1947 सनी देओल के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म 2026 में रिलीज अगस्त में प्लान है और बिग ट्रेंड में बॉलीवुड बर्ज में हम देखें तो इंडस्ट्री में डिस्कशंस चल रहा है कि SRK सलमान खान और आमिर खान यानी तीनों खान 2026 में एक साल के अंदर बिग प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जो बॉलीवुड के लिए हिस्टोरिक ईयर बन सकता है।

दोस्तों अब चलिए नजर रखते हैं लेटेस्ट ओटीटी मूवीज और वेब सीरीज अपडेट्स पर जो अब ओटीटी पर आ चुके हैं। नए ओटीटी रिलीजेस नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो जियो हॉटस्टार पर। इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर क्राइम थ्रिलर्स रोमांटिक ड्रामास और साउथ इंडियन फिल्म्स का मिक्स रिलीज हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर एक पॉपुलर एक्ट्रेस का कमबैक प्रोजेक्ट भी आया है। न्यू ड्रामा सीरीज डार्क कॉमेडी क्राइम फैमिली ड्रामा डॉक्यूमेंट्री सब अवेलेबल है। प्राइम वीडियो लेटेस्ट मूवीज में माइकल 2026 एक बायोग्राफिकल म्यूजिक ड्रामा रिसेंटली ओटीटी पर आया है। सिस्टम कोर्टरूम थ्रिलर जस्टिस बेस्ड ड्रामा है जो अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। डेकोइड एक्शन रोमांस क्राइम मिक्स फिल्म स्ट्रीम हो रही है और प्रोजेक्ट हेल मेरी स्काई एडवेंचर मूवी ओटीटी पर अब अवेलेबल है। दोस्तों नेटफ्लिक्स अपडेट फिर नेटफ्लिक्स पर 29 द फिल्म और कुछ इंडियन ड्रामास रिसेंटली एड हुए हैं। मर्दानी ट्री जैसा बिग फिल्म्स भी ओटीटी रिलीज लाइनअप में आ रही है। अपकमिंग ओटीटी नेक्स्ट वीक में देखें तो मलयालम तमिल तेलुगु और कनाडा मूवीज का फ्रेश बैच जून 12 के आसपास रिलीज होगा। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर न्यू थ्रिलर्स और फैंटेसी फिल्म आने वाली है। ओटीटी पर अभी एक्शन थ्रिलर रोमांस साउथ इंडियन मूवीज डोमिनेट कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स में आप देखें तो ड्रामास और सीरीज प्राइम वीडियो में देखें तो मूवीज और कोर्टरूम थ्रिलर्स जो हिस्सा में 200 इंडियन और स्पोर्ट्स मिक्स कंटेंट अब आ रही है। आप घर बैठे इसका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुना रहे हैं आपको फिल्मी गाने फ्रॉम द फिल्म तेरे इश्क में। गीत के बोल है दीवाना और इस गीत को गाया है ए आर रहमान ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड फिल्म से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी गपशप में, और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश है गीत फैनी खान फिल्म से। गीत के बोल है हल्का हल्का, और इस गीत का आवाज दी है सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार ने।

दोस्तों आपको बता दो कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी गपशप का यह सेगमेंट यहीं पर समाप्त होती है और अब से कुछ ही पलों में यानी 10 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। दोस्तों समाचारों के बाद मेरी फिर मुलाकात होगी आपसे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा मंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर

0: निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र और जनता के विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास पर आधारित एक नई पहचान दी है। एक दैनिक समाचार पत्र में लेख में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के विकास, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और श्रमिकों को बिना किसी रुकावट के रोजगार प्रदान करना है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मीनाब, बंदर अब्बास और केशन द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. United States Ambassador to India Sergio Goa today congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming the country's longest-serving elected Prime Minister. In a social media post, Mr. Goa said that this achievement is a powerful testament to Prime Minister Modi's decades of dedicated public service and leadership. A meeting of the National Democratic Alliance will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. Our correspondent has more details on the meeting. All constituents of the alliance, beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: शिदा भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

दोस्तों, कार्यक्रम रेडियो अंजुमान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ गया है वो सेगमेंट जहां आपकी फरमाइशों से हमारे कार्यक्रम चलती है। जी हाँ, तो भेजिए अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट हमारे नंबर पर और भेजिए अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट।

तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले नजर रखते हैं पहली फरमाइश पर। दोस्तों हमारे कार्यक्रम में सबसे पहला रिक्वेस्ट आई है कार्बी आंगलोंग असम से। रोज मेरी टेरोन पी नीली का क्रॉपी सरजांग क्रॉपी सरलोय क्रोजी से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत डिस्को डांसर फिल्म से। गीत के बोल ही याद आ रहा है और इस गीत को गाया है बप्पी लहरी ने। रोज मेरी जी, नीलिका जी और सरजांग सरलोय जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी के रिक्वेस्ट से ही हमारे कार्यक्रम की गानों का प्लेलिस्ट बचता है। जी हाँ, और आपको बता दो कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। पेश है आपकी फरमाइश पर पहला गीत।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में और कार्यक्रम में अब चलिए सॉन्ग रिक्वेस्ट की ओर नजर रखते हैं और इस वक्त रिक्वेस्ट आई है हमारे रेगुलर लिसनर टेंटन क्रो आर्चर क्रो सारॉय क्रो खारबी अंगलोंग असम से और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत कभी अजनबी थे फिल्म का टाइटल ट्रैक जिसे गाया है सुरेश वॉकर और लता मंगेशकर ने. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. पेश है आपकी फरमाइश पर ये गीत.

दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम पर और सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड और मैं हूं आपके आज है साथी दांपक। तो श्वेता अभी चलिए कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हुए नजर रखते हैं अगली फरमाइश की और इस वक्त हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है हमारे रेगुलर लिसनर से तार काकू तार रिलुम और तार जोराम जी से और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि द रिफ्यूजी फिल्म का गीत के बोल है मेरे हमसफर और इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आप आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो पेश है आपकी फरमाइश पर यह गीत।

0: जब से मोहब्बत हो गई है।
1: दोस्तों आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी करुण एफएम में और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। अब चलिए कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं और नजर रखते हैं अगली फरमाइश की। और इस वक्त हमें फरमाइश आए हमारे रेगुलर लिसनर असम से प्रिंस संदीप गुरिया जी से। और प्रिंस जी ने रिक्वेस्ट किया है गीत दर फिल्म से, गीत के बोल हैं तू मेरे सामने। और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। प्रिंस जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है आपको आप ऐसे ही हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे और आपकी फरमाइश पर पेश कर रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में ये गीत।

0: दोस्तों इसी गीत के साथ ही वक्त हो चला है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर और इसी के साथ ही समय हो चला है मेरे जाने का। लेकिन जाने से पहले आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे नानास जी। हमारे इस पहली प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता बी बोरुआ। तब मुझे यानी अपना आरजे साथी दंपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: रेडियो ऑन डिमांड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के प्रति उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के कोण पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर 14वीं कुलतारांता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक क्षेत्रीय स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ओमान तट के पास अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के विरोध में अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो होर्मुज जल डमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमेरिका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है जो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करता रहता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. Union ministers including Amit Shah, Dr. S. Jayashankar, Piyush Goyal, Nirmala Sitharaman and Shivraj Singh Chauhan, among others, have wished Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest continuous-serving elected Prime Minister of India. In a social media post, Home Minister Amit Shah said that these 12 years of Prime Minister Modi have been about restoring India's pride, cultural renaissance and freeing the nation from the mentality of servitude. Dr. Jayashankar noted that this achievement reflects the enduring trust and confidence that the people of India placed in PM Modi's leadership, vision and commitment to national development. Ms. Sitharaman added that during this period, the NDA government under Prime Minister Modi has delivered bold reforms and has implemented several initiatives with unprecedented pace and scale. She emphasized that Prime Minister Modi provided decisive and strong leadership through a series of challenging times that the nation has faced. A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Our correspondent has more details.
3: All constituents of the alliance beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. With Anupam Mishra,
2: The centre has unveiled 1.25 lakh crore rupees push for rural development in the country. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan said that the central government has already allocated 30,000 crore rupees under MG Narega. He said in addition to this, an interim allocation of 95,692 crore rupees has been released to states and union territories. With this, the total allocation will exceed 1.25 lakh crore rupees. Mr. Chauhan said this after chairing a virtual meeting of state rural development ministers regarding the implementation of Viksit Bharat Jiram Ji. The act will come into force across the country with effect from 1st of next month. The U.S. military has launched strikes against Iran in response to the downing of a U.S. Army Apache helicopter off Oman coast. U.S. officials said the helicopter was brought down by an Iranian drone and two pilots were rescued. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi warned that Tehran would leave no attack or threat unanswered, saying the U.S. had tested Iran's resolve. Meanwhile, on the Lebanese front, Israel carried out strikes on the southern Lebanese port city of Tyre on Tuesday after issuing an evacuation order covering the entire city for the first time. According to Lebanon's health ministry, at least 8 people were killed in the attack. The latest fighting has further strained the U.S. brokered ceasefire between Israel and Iran, which remains formally in place despite repeated violations. In men's cricket, India A defeated Sri Lanka A by 8 runs in a close contest in the opening clash of Tri-Nation A series at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka yesterday. Opting to bat first, India scored 277 for 6 in stipulated 50 overs, riding on Ruthuraj Gaikwad's 101 runs. Skipper Tilak Verma also scored 60 runs. In reply, Sri Lanka fell short of just 8 runs as they got bundled out for 269 runs with 7 balls remaining. And fast bowler Mohammad Siraj has been withdrawn from India's squads for the upcoming T20 international series against Ireland and England. The men's selection committee has named Prasidh Krishna as Siraj's replacement for both T20I series. And that is the end of this news bulletin.
4: श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, ये है आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। और दोस्तों, इससे पहले आपके साथ थी आप सभी के चहेते आरजे आरजे दांपा कोलंबी, जो बनी हुई थी आप सबके साथ हमारी पहली प्रसारण सभा में। और दोस्तों, अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 11:11, यानी अब शुरू होगा हमारा दूसरा पेशकश। पर इससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो और एसपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी धोले और तकनीकी अभियंता रितेश सिंह। दोस्तों, आज की इस सभा में हम लेकर आए हैं ढेर सारे मनोरंजक कार्यक्रम और देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास।

ख्वाबों से भरी दुनिया में अगर सबसे हसीन कुछ है तो वो है सिनेमा, क्योंकि कहानियां खत्म हो जाती है पर उनका जादू कभी नहीं मरता। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रूम एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और हम लेकर आए हैं हमारे इस सवा का पहला कार्यक्रम फिल्मी लहर। दोस्तों, हसीन मौसम में और हवाओं में फिल्मी वाइब्स आज थोड़ी ज्यादा है, तो अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, किचन में खाना बना रहे हो या बस बेल्कनी में बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हो, अगले कुछ पलों के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज इस फिल्मी लहर में हम बहने वाले हैं बॉलीवुड के ढेर सारे रेट्रो ट्रैक्स और ब्लॉकबस्टर गानों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये शो राहत फतेह अली खान की आवाज से। जी हाँ दोस्तों, ये है फिल्म पाप का एक आइकॉनिक ट्रैक, लगन लागी तुमसे मन की लगन, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों भागती दौड़ती इस जिंदगी में सुकून का लम्हा ढूंढते हैं। चलो आज इस भीड़ में खुद को दोबारा ढूंढते हैं, क्योंकि शहर बड़ा हो या छोटा, दिल तो आखिर दिल है और इस दिल में ही हम अपनी पूरी दुनिया ढूंढते हैं। चलिए दोस्तों, अब जब हम मॉडर्न शहरों की बातें करते हैं तो दिमाग में आती है थोड़ी सी तन्हाई, थोड़ी सी उलझन और ढेर सारा स्ट्रेस, और इसी अर्बन लाइफस्टाइल, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप और उनके बीच पनपते हसीन इश्क को दिखाया है डायरेक्टर अनुराग बासु ने अपनी बेहतरीन फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में। कमाल की कहानी है, कमाल के एक्टर्स, और उससे भी ज्यादा कमाल का है ये प्रीतम दा का म्यूजिक। तो चलिए इस भागती हुई मेट्रो लाइफ को थोड़ा सा पोज देते हैं और खो जाते हैं सोहन की आवाज के इस जादू में, जो सुनते ही दिल को अलग ही सुकून देता है। प्लग इन योर ईयरफोन्स, रिलैक्स और सुनिए इन दिनों दिल मेरा, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडी। सभी कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री

सुरों का कोई धर्म नहीं होता, संगीत की कोई जुबान नहीं होती। जहां दिल से दिल मिल जाए वहां बसा है, वहां भाषा की कोई दीवार नहीं होती। एक धुन ही काफी है रूह को छू लेने के लिए, क्योंकि हर जज्बात के लिए लफ्जों की मोहताजी नहीं होती। हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्जुन अनास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और हम लेकर आए हैं आपका स्पेशल सेगमेंट नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। दोस्तों, अक्सर हम वही सुनते हैं जो हमें समझते हैं, पर आज हम उस संगीत को महसूस करेंगे जो सीधा दिल पर दस्तक देता है। वेलकम टू आवर स्पेशल सेगमेंट नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, जहां हम लेकर आए हैं ढेर सारे नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। ऐसे गाने जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने दिल से और अपने रूह से बनाते हैं। और दोस्तों, आज हम इस शो का सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में एक बंगाली फिल्म जिसका नाम है पारबोना निचार्तितो के, जो बनी थी 2015 में। इस फिल्म का एक आइकॉनिक ट्रैक लीजिए पैसे, ये बेहतरीन सॉन्ग पारबोना ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं AR रहमान की आवाज में प्रे फॉर मी ब्रदर, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: और श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट परिचय, और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नरेंद्र मोदी जी, आज प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से

गुजर जाता है पर यादें वही रुक जाती है। नए दौर के शोर में पुरानी दुनिया की सुकून जाती है। वो बीता हुआ कल एक हसीन ख्वाब था दोस्तों, जहां लफ्ज दिल से निकलते थे और सीधा रूह में उतर जाती है। नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिट्स हिंदी क्लासिक म्यूजिक पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। दोस्तों आज हम जा रहे हैं बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर में, यानी 1960s से लेकर 1980s के उस बेपना हसीन जमाने में। ये वो समय था जब म्यूजिक सिर्फ सुने नहीं महसूस किए जाते थे। एक तरफ आर डी बर्मन का एनर्जेटिक जानकार था तो दूसरी तरफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी की दिल को छू लेने वाली मेलोडीज, रफी साहब की दीवानगी, किशोर दा का अलबेलापन और लता मंगेशकर और आशा भोसले की नजाकत। सच्चा इश्क और असली तरानों का दौर था वो। तो चलिए आज की भागदौड़ को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और मुड़ते हैं उन गलियों की तरफ जहां हर गाना एक किस्सा था। सुनिए मुकेश की आवाज में फिल्म कभी कभी का ये पहला एवरग्रीन नगमा ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: चलिए आइए श्रोता दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन नगमों के साथ. इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात.
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: The Office of the District Magistrate, capital Itanagar, has observed that illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts, and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar capital region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: पहली नजर का जो तीर होता है वो सबसे गहरा होता है. जब मिलती है आके उनसे तो वक्त भी वही तहरा होता है. होश तो तभी गुम हो जाते हैं दिल के जब उनकी पलकों पर हमारी चाहतों का पहरा होता है. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे नाना साहब. सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात. दोस्तों, साल 1968 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने रोमांस और फैंटेसी का एक कमाल का मिक्स परोसा था. हम बात कर रहे हैं फिल्म झुक गया आसमां की. लेजेंड लेक तंडोन जी की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में चॉकलेट हीरो राजेंद्र कुमार साहब और बेहद हसीन सायरा बानो जी की जोड़ी ने पर्दा ही नहीं बल्कि सबका दिल भी जीत लिया था. फिल्म की कहानी जितनी मजेदार थी उससे भी कहीं ज्यादा आइकॉनिक था शंकर जय किशन जी का म्यूजिक और इसी फिल्म का एक ऐसा नगमा जिसे हमारी प्यारी लता मंगेशकर ने अपनी नजाकत से भरी आवाज दी है. जब पहली बार किसी से आंखें मिलती है और दिल की धड़कन रुक सी जाती है, ये गाना बिल्कुल वही फीलिंग देता है. तो चलिए डालिए इस हसीन दौर में और सुनिए उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गई. ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात.

और स्वतः दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए आइए दोस्तों सुनाते हैं आपको कुछ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, उसके बाद आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: और श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुणा एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात. मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा होस्ट आरजे ननास. और दोस्तों अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर में हिट सॉन्ग 90s के साथ. तो बने रहिए, जुड़े रहिए अरुणा एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर.
1: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the Midday News.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
6: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
6: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
7: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है।

0: में 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास, ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात।

वो चाहत पर वो छत पर जाकर चुप चुप कर देखना, वो खत लिखना मोहब्बत में, गुजर गया वो दौर मगर आज भी जिंदा है वो नजाकत यादों में। नए जमाने का शोर तो बस कुछ पल है, मेहमान है दोस्तों, असली सुकून तो आज भी मिलता है उस 90s की हसीन चाहत में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना मन पसंदीदा शो हिट्स ऑफ 90s। दोस्तों 90s का वो जमाना, ना इंस्टाग्राम था ना व्हाट्सएप का रोना, पेंसिल्स के पीछे इरेजर से टेप कैसेट्स को घुमाना और रेडियो पर अपने फेवरेट गाने के लिए घंटों इंतजार करना, और म्यूजिक दोस्तों आनंद मिलन, नदीम सरावन, जतिन ललित और ए आर रहमान साहब ने जो मेलोडीज दी है ना, वो सीधा दिल के पार निकल जाती है। कुमार सानू का आवाज, आलका याग्निक की सुर और उदित नारायण की वो प्यारी सी स्माइल, सच में 90s सिर्फ एक डेकेड नहीं, एक बहुत बड़ा इमोशन है। तो चलिए दोस्तों वॉकमैन का जमाना याद करते हैं और डूब जाते हैं उसी दौर के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर नगमे में। आइए सुनते हैं फिल्म दिल से का ये बेहतरीन नगमा, छैया छैया, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने और इस गीत के संगीतकार है एआर रहमान। लीजिए पैसे ये बेहतरीन नगमा आप सबके लिए, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और लीजिए तेज से ये बेहतरीन सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म डुप्लीकेट, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। ओनली ऑन अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। अब इसके बाद आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, उसके तुरंत बाद मिस मे कमान श्रोताओं का समाचार और उसके तुरंत बाद ताई खामती श्रोताओं का समाचार।
1: This is Kenny Mango. Today's headlines are: Prime Minister Narendra Modi becomes the longest-serving elected Prime Minister of India today. World leaders congratulate Prime Minister Modi. Union Cabinet passes resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. In Jaipur, 7 people died and several others injured after a fire broke out following a blast at an alleged illegal firecracker warehouse. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar extends greetings to the people of Portugal and his counterpart Paulo Rangel on the occasion of the country's National Day. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri says there is no shortage of compressed natural gas in the country, assures government is expanding the supply of piped natural gas to households, and efforts are being made to convert LPG connections to PNG connections. U.S. military launches strikes against Iran in response to the downing of a U.S. Army Apache helicopter off the Oman coast. U.S. officials say the helicopter was brought down by an Iranian drone and the two pilots were rescued. Defense Ministry to hold workshop on defense procurement, innovations for defense excellence and testing procedures for MSMEs and startups in New Delhi tomorrow. Minister for Tourism P.D. Sona, along with MLA Advisor Tourism Mopi Mihu, called on Union Minister of Tourism Gajendra Singh Shekhawat at New Delhi today. The meeting deliberated on Arunachal Pradesh's ongoing tourism initiatives. Ministry of Coal to organize a roadshow on coal and lignite gasification projects in Hyderabad tomorrow. Popular director in Kollywood Bharati Raja passes away at 84 in Chennai today. That's all in this news headlines. Namaskar.
2: जा आकाशवाणी ईटानगर दिन यासी लाइक मिन कैप मक बजे सर किन कुमार लाइक सॉन्ग फोला के मनोरम पुल तो किन कुमार लाइक सॉन्ग क्राइमी तो सिट का ग्याची लेकिन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी दिन इंडिया रफ लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लल्ला दने का ख्रेपू जा अनविका प्राइम मिनिस्टर ओट जा अनवन लौहिंग किन के मगन ब्रनरत हलूद लाइक टर्मो कटाम जा अनवन वी का ऑफिस हा ओट ला पो हेब्रा अहे का तुतने जा अनवन वी प्राइम मिनिस्टर चकमंग ब्रा अंत पी ही शो मोले मुंग हेला लीडर्स चंग तो अंजा अनसन के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वी कांग्रेचुलेट कर पटो इंडिया इंडिया रा फॉर लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लातन पी ही दने का डाला किन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जय शंकर का अज शोमो पोर्टुगल है चोंग चंगटो अंजान सन वी वी का कांग्रेचुलेट कसरा गरा एक्सटेंड ग्रीटिंग एक्सटेंड कन बुद डाला अंजा अनन वी का पोर्टुगल है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाउलो रेंगल अंजा अन वी ने वी का ग्रीटिंग एक्सटेंड कन बु अंजा अनसन फॉर नेशनल

0: chom nang akhing nam na lina studio mai chicken ma ba pha poi na thun si cha hang ma nai kham te kham ti ho tu khai mai sot yo ho
1: तो श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे ताई कमती श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस कार्यक्रम को अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोता दोस्तों अब शुरू होगा आपका कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

पर्दे पर जो दिखाता है वो तो बस एक कहानी है, असली मसाला तो पीछे है जहां पूरी दुनिया दीवानी है। गुड इवनिंग लिसनर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुनेंगे आपका सबसे चटपटा सबसे तीखा सो बॉलीवुड अपडेट्स। दोस्तों, आज बी टाउन से ऐसी ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इस पूरे जून के महीने में बॉलीवुड के अंदर एक अलग ही लेवल का धमाका चल रहा है, तो अगले कुछ पलों के लिए सब काम छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए एकदम गर्मा गर्म बॉलीवुड गॉसिप्स और बॉक्स ऑफिस की रिपोर्टिंग।

दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस सुनामी की जो सिनेमा में आई हुई है। ट्रेड पंडित और एनालिस्ट हैरान है क्योंकि इस महीने यानी जून के चार हफ्तों में एक दो नहीं बल्कि 9 मेजर रिलीजेस लाइन में खड़ी है। ओवर 1400 करोड़ रुपीस दाव पर लगे हैं बॉस। पिछले कुछ महीनों से तो बिल्कुल सन्नाटा था, पर इस महीने मेकर्स ने जैसे ठान ली कि सारी फिल्में एक साथ ही निकलेगी। शुरुआत हुई वरुण धवन की हे जवानी तो इश्क होना है से, फिर आई बॉबी देओल की एक्शन थ्रिलर बंदर और साउथ के सेंसेशन रामचरण की पैन इंडिया मूवी पेड़ी के क्रेस से। और अगले हफ्तों में दिलजीत दोसंझ की मैं वापस आऊंगा और अक्षय कुमार की मेगा मल्टी स्टार्टर वेलकम टू द जंगल जैसी बड़ी फिल्में आने वाली है। सच्ची बताऊं तो थिएटर्स में स्क्रीन्स के लिए दासू लड़ाई चल रही है।

चलो थोड़ा थिएटर से निकलकर ओटीटी और कोर्ट रूम्स का चक्कर लगाते हैं। अगर आप इस वीकेंड घर पर बैठने का प्लान बना रहे हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि गुल्लक सीजन 5 वापस आ गया है आपको हंसाने और रुलाने। सोनी लिप पर मिश्रा परिवार की प्यारी सी कहानी फिर से शुरू हो चुकी है और उनके साथ ही करिश्मा कपूर की ग्रिपिंग ट्रिलर ब्राउन भी Z5 पर धूम मचा रही है। और दोस्तों, वही दूसरी तरफ लीगल गालियों से एक खबर है हमारी हसीन जैकलिन फर्नांडिस को लेकर। उनका जो 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है सुकेश चंद्रशेखर के साथ, उस पर कल यानी जून 11 को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट हियरिंग होने वाली है। जैकलिन ने ट्रायल कोर्ट के चार्जेस के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलती है या नहीं।

तो दोस्तों ये थी आज की बॉलीवुड की सबसे भरी और गर्म खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी शो पर इसी वक्त ढेर सारे नए किस्से और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गाने सुनते रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे मनासुर। आइए सुनाते हैं हम आपको इस कार्यक्रम में एक बेहतरीन नगमा। मेरा दोस्त

0: और श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स। हम कल फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन मसालेदार खबरों के साथ। अब आप सुनेंगे वांचा श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ अनि जूनलेट मनी बन तारीख बुधवार इरुमा केम वांचो चायका हवंग वांगना हवंगे का हो पाई फाले मंचुई जमे खमे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खामा लोटलो ले मोके खामा 2014 रंगपोमा मे सा रक्तो खांगे मोकले अनि कबले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वै चनलो ले मोकना हबीबी बामा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए इंडिया मा जायका मोलम सलम धोरम रंगलम बोमा चावान लोंखो बामा ले ता पॉइंट अली बिलियन खनाक नुखुई खपले माली माली लंपन अमाय आंगले मकुदवा केम देशमा इंडिया अंके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर खाखामा होजाक लोले मक खोमा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो चावान लोंक लीडर्स थंपंग अवै फुमरमले होबकले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ए पोर्चुगल खनकनु बोमा ची निंके पाउलो रेंगल तो हाटोले होम डेस नेशनल डे हानपंग मा मोंगमाइका होले सोशल मीडिया मा

0: और स्वतः दोस्तों इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे दुमिस में श्रोताओं का समाचार, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर एक बार फिर से।
1: का कार्यक्रम ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और अब आप लुफ्त उठा पाएंगे दुमिस में श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर थाला पुचे जी हूँ न्यूलिनी एतानी ईद मिशमी आहोला के जी दरगा लम्बो इन एजा गाय हलुपी माची नु शोला पुचे जानी हर एह माची नि इंडिया माची प्राइम मिनिस्टर साहिबा नरेंद्र मोदी में एतानी हो इंडिया माची इनी पेन दो एजार का पीदो ने मौका सो ने खेनी हो खेनी नि प्राइम मिनिस्टर साहिगा इमु शाबदा ला होगा इन मामा मारोकानी माची नु शोला पुचे जहोसो माची ने इन मामा खिया तार हो का पी माची नो युला पुचे जानी हो इपी माची नली बा एजर का पी दोने मौका सो ने खेनी हो इो नि पंडित जवाहरलाल नेहरू में प्राइम मिनिस्टर शाम्बा महो इन मामा खिया तार हो माची नो युला पुचे जानी हो इपी माची ने इन मामा खिया ने इहू इू माची नोली बा एजर का पी दोने इहू इू नि वेबा ने इंदिरा गांधी में इंडिया मा ची प्राइम मिनिस्टर शाम्बा ची आ महो यता दत्ता ची आत्यालम्ब में नरेंद्र मोदी में इंडिया मा ची इन प्यान दो प्राइम मिनिस्टर शाही बचा है प्राण प्रभुता ला हैं दगा दा आओगा ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कोमा ने इंडिया में पोर्टुगल को जोड़गा हुए हुगा जिदा ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर में ऐतनी पोर्टुगल दे इनी एनागा मा ची नी पोर्टुगल फॉरेन मिनिस्टर पाओलो रंगेलागो लाहेगा दा आहोगा अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म मिनिस्टर पी डी सोना में ला रहेगा मुपी मिहू अतुगे ने ओना मैं दिल्ली माने यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत को चौगा गने अरुणाचल प्रदेश मा टूरिज्म प्रोजेक्ट जगह अंदर चिपुआ

0: ला कर बता आहोगा आईपीएस आजा रोबिन हेबू मैं लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो मा खागा सेंट क्लेरेट कॉलेज सोशल वर्क डिपार्टमेंट माचे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस शाही बदा आहोगा एचाहो दिल्ली पुलिस माचे डायरेक्टर जनरल आजा जोगा रोबिन हेबू मैं इंडिया तिका एम माचे इमु प्राउड के बने सोशल वर्क जोयचा अतुगेने दिल्ली पुलिस का आजोपा आना ने यूनियन होम मिनिस्ट्री में लातेगा बचेदा आहोगा यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बाद स्टेट मिनिस्टर पवित्रा मार्गरेटा में पुनी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो आतिको के बने जीरो हैंडलूम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स होम आज तेगा ना होचा अनाप्रा आकाचिहा बता आहोगा यूनियन मिनिस्टर में कंपनशिप हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम को कोमाने अफर माया इमोलम्रो अफर माने वाया अंजे अपी ओंग बता आहोगा अरुणाचल प्रदेश मा चे खेपा राज्यसभा सीट के बने चला पुची जी हो यु मा चे नि इलेक्शन अखगाई बोमा इमु देमाया गा बने ताई तगक में मुई राज्यसभा एमपी शाम बदा आहोगा ताई तगक अमु माने कानी नॉमिनेशन आजपा हातेलाची बुनी ईटानगर ची अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली माने रिटर्निंग ऑफिसर जा तादर मीना ने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जा लोंगमांग रोंगरांग में प्राबुदा अथुसु तेगा बदा आहोगा बोर्ड हंगाची मबे अनिलावे अरुणाचल प्रदेश बीजेपी में ताहु मेंबर असेंबली में चिका प्रभु ताहु एमएलए इनेगा चिमाहो ताई तागक में नाबाम रेबिया जीपोमा राज्यसभा एमपी शाइबावे एचा आमनुगे बने आमहाय ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी माचे FOAS में बुनी नामसाई डिस्ट्रिक्ट माचे आपित्या इमु अलंब्रो यापी आपिगा बदा आहोगा आ स्कीम को कोमाने नामसाई लोअर डिबम बेल दोने पपुंपर डिस्ट्रिक्ट माचे आपित्या इमु अलंब्रो यापी आपिगा इबो महो बेकरी दोने नूडल्स आजुए माबु अरगाव दाने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी FOAS मच में ला होगा आ प्रोजेक्ट है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस फैकल्टी मचे डीन डॉक्टर संदीप जोंगू में जाने का था आ होगा ऑल निर्जुली सिटीजन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में अहम बयागा निर्जुली अतिकाची नेशनल हाईवे आए छे नंबर माओका पेना होलोमा आयो पेया कादोला माओका निबुशी आसिब्रा निगाला था ला होगा आ महो मैंने लिया आशीर्वाद मानुमा ची मु मैम आशीर्वाद शिजिगा मी बुजी ना ने ऑर्गेनाइजेशन आने पर मैं लाओगा दा आओगा ऐतनी सी इडमिश मी आहो अली माओ दबाए ऐचा आकाशवाणी ईटानगर दिव्यगढ़ नाली इडमिश मी प्रोग्राम मा ऐचम ता आशे अहोंसो किया महो ऐतनी हैंडो आजाती मिमी सी चाशी ची अहोंजी
1: दोस्तों आप सुन रहे थे इदुमिसमी श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस कार्यक्रम को अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा TRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब चलिए शुरू करते हैं हमारा संगीत में सफर। और इस संगीत में सफर में आप सुनेंगे पहला गाना फिल्म MS धोनी का, जिसे गाया है अमाल मलिक ने। लीजिए फिर से ये बेहतरीन नगमा बेसब्रिया ओनली ऑन अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

तो श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसके बाद आप सुनेंगे तांसा श्रोताओं का समाचार। और अब श्रोता दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:17, यानी मेरे अलविदा करने का वक्त। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब आपके साथ जुड़ने वाली है आप सबका मन पसंदीदा, आप सबका चहेता आरजे मंजू पामो, जो बनी रहेंगी आप सबके साथ हमारे तीसरी प्रसारण सभा में। और दोस्तों, आई होप कि इस सभा में बजे सारे कार्यक्रम आप सब ने काफी ज्यादा एंजॉय किया है, और इसी तरह के और भी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे कल फिर इसी स्टूडियो में इसी वक्त। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, इससे पहले मैं यहाँ से निकलूँ, आप सबको बता दूँ, आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसाधन निष्पादक पी धोली और तकनीकी अभियंता रितेश सिंह। तो अब मुझे, यानी आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास को दीजिए इजाजत। शुभ दिन, नमस्कार।

डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पर अरुणाचल प्रदेश पर सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन तक यंग मकाउनांग आरियंग सताई म मीटिंग नांग रफान थ मुराउ टूरिज्म मिनिस्टर रूक लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट नांग जीरो वांग सेंट क्लेरेट कॉलेज वांग सोशल वर्क डिपार्टमेंट नांग आईएएस ऑफिसर रॉबिन हिबू प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस म अपॉइंटमेंट कुत पर होम मिनिस्ट्री र एप्रूव कुरी तंगो रोक पर जो कॉलेज र प्रेस स्टेटमेंट कुतनांग मेजलिंग रंखू तारीख छिर जो मिनिस्ट्री र ऑफिशियल कम्युनिकेशन लम पर एप्रोवल पर कुतंगो रोक और ऊपर म सेरेमोनी तक यंग तनांग कॉलेज वांग स्टाफ हेंग हेल्पिंग हैंड्स नई जीरो वांग महात्मा गांधी सेंटर वांग मेंबर हेंग पर तोंगथोक पर म रॉबिन हिबू नई अचेकमन ऑनलाइन लम सेरेमोनी नंग तोंग थोक तो रूक अचोंग गवर्नमेंट वंग एक्सटर्नल अफेयर्स नई टेक्सटाइल म मिनिस्टर ऑफ स्टेट पवित्र मार्गरेटा र लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट रायवंग त प मनेसो थुम तंगो रूक पर जो मिनिस्टर वार जीरो हैंडलूम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स म फाउंडेशन लोंग सोंग त पर म मिनिस्टर वार कॉम्प्रिहेंसिव क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम अंडर म लोकल आर्टिजन महेंग म स्पेशलाइज टूल किट्स मन कुतंगो रोक अरुणाचल प्रदेश वंग असी कलाक राज्यसभा सीट म नॉमिनेशन पेपर फाइल कुरी तो मनई लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरियट नांग स्क्रूटिनी तगयांग तंगो रोक पर जु अनई नॉमिनेशन पेपर फाइल कुरी तो वंग बीजेपी कैंडिडेट ताई तगाक नॉमिनेशन लिख प अलम वेडिट लाभ तंगो रोक अरो परमा म कैंडिडेट पर काउंसिल ऑफ स्टेट इलेक्शन म वेलिड लम म नॉमिनेट कजांग रंग राव डिक्लेयर कुरी त ngo रोक त अरो पर जु कैंडिडेट नै रिप्रेजेंटेटिव सेंग मन न तोंग त नंग अरुणाचल प्रदेश बायनियल इलेक्शन वंग सीईओ कम ऑब्जर्वर पवन कुमार सेन र रायमाई रो अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वंग रिटर्निंग ऑफिसर कम सेक्रेटरी श्रीमती तादार मीना नई एआरओ लोंगमान रोनरांग र नॉमिनेशन लीग स्क्रूटिनी कैंप तगयांग तंगो रूक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी वांग फैकल्टी ऑफ एप्लाइड साइंसेस र नॉर्डिस म मिलेट प्रमोशन प्रोजेक्ट अंडर म नामसाई डिस्ट्रिक्ट वांग पक्सोमन म हमोय लई प कुतंगो रूक अरो पर प्रोजेक्ट म हैदराबाद वांग ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च र पांग हजन इरा खुरा क्रोक खुरा सने फाइनेंशियल पांग म फन प कुरंगो रोक त अरो मचो फाइनेंशियल पांग नंग नामसाय रोइंग नै पपम परे डिस्ट्रिक्ट प पर प्रोजेक्ट र होम रंगो रोक त पर म मिलेट प्रोसेसिंग ट्रेनिंग मन जलाउ मसो तगयांगची अरो पक्सोम वन म प्रोजेक्ट अंडर म मिलेट प्रोसेसिंग बेकरी नै नोडल यूनिट मन तफांगसिंगो रोक त अरो ऑल निर्जुली सिटीजन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन र अनेक नेशनल हाईवे 415 लाम नंग सोशल सर्विस नै प्लांटेशन ड्राइव प तगयांग तंगो रोक त पर जु नेशनल हाईवे 415 लाम वंग डिवाइडर नंग रचनै तान लै पुफोक प खाइ त अरो पर पुफोक खाइ त प नरी म वोंकांग म अरो निर्जुली प अचापा म नुंग म ऑर्गेनाइजेशन र निर्जुली वंग लोकल रेसिडेंट महिंग मरुक्त रुमरांग इतानांग थुमरा।

नमस्कार श्रोता, स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से तांगसा डायरेक्ट न्यूज के बाद अरुण एफएम प्रसारण सभा में। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:27 हो रहे हैं और बता दो आपको कि इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। ये भी बता दो आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो। और हाँ, थैंक यू सो मच दकमे नानास जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये शाम बहुत सुहाना बीते।

डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आप सुनते तो जरूर हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। व्यक्ति की असली पहचान उसके गुण और व्यवहार से होती है। साधारण दिखने वाला व्यक्ति बहुत प्रभावशाली भी हो सकता है। श्रोता, यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है। अरुण एफएम प्रसारण, जी हाँ, अरुण एफएम आपके मनोरंजन का खास ख्याल रखती है। हर तरह के नए पुराने गीतों के साथ हमेशा हाजिर रहती है आपकी खिदमत में। तो चलिए इस मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर।

स्वागत है श्रोता आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ साथ दोस्तों कुछ अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे आपके साथ। हमारे समाज में कई ऐसी परंपराएं और मान्यताएं हैं दोस्तों जिन्हें लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि इनमें से कई बातों के पीछे स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़ी वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। समय के साथ लोग असली कारण भूल गए हैं और केवल नियम या मान्यता याद रह गई है। तो आज इस कार्यक्रम के दौरान चलिए श्रोता ऐसी ही मान्यताओं के बारे में जानते हैं विस्तार से। दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं और आपने भी सुना है, शायद आप भी अपने बच्चों को कहते हैं कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। भला क्या कारण हो सकता है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इससे लक्ष्मी घर से चली जाती है। इसे लोग धार्मिक मान्यताओं से जोड़ते हैं, लेकिन कारण ये है दोस्तों कि पुराने समय में बिजली नहीं होती थी और लोग दीपक या कम रोशनी में काम करते थे। शाम के समय झाड़ू लगाने से गलती से कुछ जरूरी घर के सामान या छोटी मोटी वस्तुएं कचरे के साथ बाहर फेंकी जा सकती हैं। यही सोचकर ये प्रथा शुरू हुई कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। साथ ही अंधेरे में सफाई अच्छी तरह से भी नहीं हो पाती है, इसीलिए इस आदत को रोकने के लिए इसे धार्मिक रूप दे दिया गया है। और फिर दोस्तों ये भी आपने जरूर सुना होगा कि शाम के समय नाखून नहीं काटने चाहिए। आप भी कहते होंगे अपने बच्चों को। पहले के समय में दोस्तों बिजली नहीं होती थी, कम रोशनी में नाखून काटने से हाथ या उंगली कटने का खतरा रहता था। नाखून इधर उधर गिरकर गंदगी भी फैला सकती थी, इसीलिए सुरक्षा के लिए रात में नाखून काटने से मना किया जाता था। इसी तरह की और भी कुछ बातें करेंगे आज हम इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का।

श्रोता, अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का मेरी जंग फिल्म से, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो। दोस्तों, पहले के जमाने में जमीन पर बैठकर ही खाना खाया जाता था। जमीन पर बैठकर खाने से शरीर की मुद्रा यानी कि पोस्चर सही रहती है, बैठने से पाचन तंत्र बेहतर काम करता है और भोजन धीरे धीरे खाने की आदत बनती है, ना कि आज के जमाने में देखा गया है कि खाना पीना बहुत जल्दी खाया जाता है, समय बचाने के लिए जल्दी पहुंचना होता है आपको अपने काम में, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे भोजन आप जब बैठ कर खाना खाते हैं तो भोजन अच्छे से पचता है और शरीर को अधिक लाभ मिलता है। इसे योग में सुखासन की तरह भी माना जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और फिर दोस्तों, कई बार देखा गया है कि आप या मुझ में भी, हम में भी, हम लोग भी शायद इस तरह की गलतियां करते हैं कि खरे खरे ही पानी पी लेते हैं। बैठकर पानी पीने से पानी धीरे धीरे शरीर में जाता है और शरीर उसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाता है। खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से पाचन पर असर पड़ता है और शरीर को पानी का पूरा लाभ नहीं मिलता। बैठकर पानी पीना शरीर को संतुलित और पाचन के लिए बेहतर माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पानी पीते हैं तो बैठकर ही पानी पीने की आदत डालिए। दोस्तों, भोजन के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, ये सभी हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं। और फिर इधर दोस्तों, मंदिर या घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धोना, इसे धार्मिक नियम माना जाता था, पर असल बात यह है कि बाहर की धूल मिट्टी और कीटाणु शरीर पर लगे होते हैं। हाथ पैर धोने से स्वच्छता बनी रहती है और संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। तो इस तरह की कुछ मान्यताएं ऐसी हैं दोस्तों, जिनके पीछे का सच हम नहीं जानते और इन्हें धार्मिक नियम मानकर बैठ जाते हैं। ऐसे कई नियम हैं दोस्तों, जो हमारे स्वच्छता और हमारे हेल्थ को लेकर के बनाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको इस अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है आशा भोसले की आवाज में।

0: दोस्तों आस्था भोसले के गाए हुए इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे नोक्टे डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नोक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमलों में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति है। विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव

0: पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है। अमरावती नया शहर बन रहा है। नए शहर में जो कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे ऑफिसेस से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए लगभग 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख सेक्टर रक्वेयर फीट कॉन्ट्रैक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन में मैप में सारा 2 प्रोजेक्ट्स है, 2 रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने आज घोषणा की कि वह भारत में अपना पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करेगी। समझौते के अंतर्गत मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी। यह डेटा सेंटर भारत के प्रति मेटा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक है। उत्पादों और एआई क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। वैश्विक कंपनी एक बयान है में कहा कि भारत का विशाल उपयोगकर्ता आधार और तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था इसे निवेश के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। जामनगर में यह सुविधा कंपनी को वैश्विक स्तर पर एआई बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में मदद करेगी, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक निवेश को भी मजबूत करेगी। त्रिपुरा में खोवाई जिले के उपमंडल वन विभाग ने अवैध रूप से कटाई और इमारती लकड़ियों को और लट्ठों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग ने पिछले 2 दिनों में खोवाई उपमंडल में कई छापे मारे, जिनमें लगभग 220 घन फुट अवैध रूप से काटी गई लकड़ी और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए 4 वाहन जब्त किए गए। अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल की गई पेड़ काटने की मशीनें भी जब्त की गई। उपमंडल वन अधिकारी सुस्मिता दास ने बताया कि 2 दिवसीय अभियान के दौरान लगभग 7 लाख रुपए की अवैध लकड़ी बरामद की गई। वन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 4 मामले दर्ज किए गए हैं और जांच जारी है। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण BVGRAMJI में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले आवश्यक तैयारियां करने को कहा है। उन्होंने बताया कि 26 राज्यों ने बजटीय प्रावधान कर दिए हैं, जबकि झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम में भी प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य के आवंटन में कटौती नहीं की गई है और पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 40% की वृद्धि की गई है। श्री चौहान ने जोर दिया कि BVGRAMJI का उद्देश्य ग्रामीण विकास में तेजी लाना और श्रमिकों को बिना किसी रुकावट के रोजगार प्रदान करना है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालाक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिका के पांचवें बड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी पांच ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया है कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमरीका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इसराइली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इसराइली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन में है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Priya Badu. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days, making now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. President Draupadi Murmu has congratulated Prime Minister Narendra Modi on serving as the longest continuously elected Prime Minister of the country. In a social media post, the president said that this landmark occasion stands as a testament to the enduring trust and confidence reposed in his leadership by the people of the country. She highlighted that his tenure has been distinguished by far-reaching advancements across governance, economic resilience, and social transformation. She said, of the many initiatives undertaken under his leadership, PM Janman and Dharti Abha Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan hold a special place in her heart. The president said Mr. Modi's inspiring journey continues to instill hope and renewed confidence in India's strong democratic traditions. The Union Cabinet today passes a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions. Mr. Vaishnaw said, Prime Minister Narendra Modi has taken strict action against terrorism. He said the cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6 kilometers long metro corridor with 5 stations. The minister said upon operationalization of Phase 2A, the Ahmedabad Gandhinagar

0: will have over 77 kilometers of active metro rail network. He said the cabinet also approved central government office complex and central government residential complex in Amravati in Andhra Pradesh. Union ministers, industrialists and world leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected prime minister of the country. A meeting of the National Democratic Alliance will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today said that there is no shortage of compressed natural gas in the country. He said the government is expanding the supply of piped natural gas to households and efforts are being made to convert LPG connections to PNG connections. Trinamool Congress MP Sushmita Dev has resigned as a member of the Rajya Sabha. She has sent the resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. After her resignation, she met Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma in New Delhi. Earlier, veteran Trinamool leader and Rajya Sabha member Sukhendu Sekhar Ray had resigned from both Rajya Sabha and the party. American and Iranian forces have traded military strikes in a sharp overnight escalation that has pushed the region's fragile truce to its limits. U.S. Central Command confirmed its forces completed self-defense strikes against Iran yesterday on the direction of President Donald Trump in response to the downing of a U.S. Army Apache helicopter near the Strait of Hormuz the previous day. Trump said both crew members were safe and uninjured, but stressed the United States had to respond. CENTCOM said the airstrikes targeted Iranian air defense systems, ground control stations and surveillance radar sites near the strait, using precision munitions from U.S. Army, from U.S. Air Force and Navy fighter jets. Iran's response came swiftly. The Islamic Revolutionary Guard Corps claimed it launched drone strikes on the U.S. 5th Fleet in Bahrain and the Ali Al Salem Air Base in Kuwait, as well as a long-range missile strike on the Al Azraq Air Base in Jordan. Jordan's armed forces confirmed they intercepted and destroyed all 5 Iranian missiles fired towards the Azraq region. That is all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और अब आप सुन पाएंगे नुक्त श्रोताओं का कार्यक्रम.
2: अंगाना ना रंजा ठासन आकाशवाणी ईटानगर डिपोगर बा रंजा वन बंगा बाजी सा पटा रे रे ना नुक्त खब चोता दन तजा जून जा वन छि तारीख बुध बाजा खब चो को हन जाफन ता जामा अरे खब हे चोता मंग Prime Minister Narendra Modi Thaja, India hai a low twin tongte Prime Minister Jao Dangaika. Adiko Modi ma out of office pa May Jang, Lokne Vane Loktare 2014 Rangpa ko hoon wajo. Adiko 1.4 billion minyan le ajajat jab niyam marang religion le geography dam nang ati are achievement pa thakto li jong ama choto ko wajo. Adiko ahan diak nang political churn government dab dab lik le policy uncertainty dang di kom India nang leadership le governance pa majak tham jo experience ho le ga adi ka dia khai alotwen tong te prime minister dang tha dia ka jawa leader se ma congratulate pa hon ba jo adi ka thing ma prime minister transformative governance global south rang advocacy le inclusive le economically dynamic India rang vision rang hon man pa jo ho le ga External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar ma Portugal le Paulo Rangel wa Minyan he nang thing dia khe National Rangoja ko greetings pa chojo na wa jao. Adi ka social media post nge ma India le EU strategic partnership khan ko Portugal dam nang bilateral ties pa rong si rang jo suwe ki nga ma min Dr. J. Shankar ma choto ko wa jao. Minister Tourism P.D. Sonadam ko MLL Advisor Tourism Mopi Mihuni Thaja New Delhi Nang Union Minister of Tourism Gajendra Singh Shekhawat Dam Nang Chomin Wajao. Adi ka Sonama Arengo 20 pa Arunachal Pradesh Nang Tourism Nga Nang Initiative Kab Eki Le Tourism Rang Infrastructure Destination Development Le Arunachal Pa Unique Le Sustainable Tourism Nang Position Huan Rang Alam Li Nien He Nang Thomin Wajao Nga Ma Jotoko Wajao. मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्समा आईपीएस अफिसर रबिन हिबु लोवा सुबनश्री वा सेन्ट क्लेरेट कलेज जिरो नाउ सोसियल वर्क डिपार्टमेन्टको प्रोफेसर अफ प्र्याक्टिस रङज अपोइन्ट हुनेका अडिका कलेज नेवा प्रेस स्टेटमेन्ट कोटाको रिन प मेजा लोक्ने तारिकको अफिसियल कम्युनिकेसन नेमा चुजेटुपा जाउँ आमाज चुठो गएका अडिकारे प्रोग्रामको कलेज वा स्टाफ हेल्पिङ ह्यान्ड्सले महात्मा गान्धी सेन्टर वा मेम्बर्स एकदम अगुवा जाउँ ngale robin hubule ate humte ni min online ni ma jo nokwa jong ama jo chuje thukeka minister of state for external affairs le textile government of india pavitra margherita ma maja lowas subansir visit pa thon hon wa jong ani ko visit wangtha ko nya rang niyakta zero handloom marketing complex hon rang foundation long pa to ko wa jong ani ko comprehensive handicraft cluster development scheme khan ko local artisan se na specialized toolkit he min chuko wa jong अरुणाचल प्रदेश वा वंटेलोलो राज्यसभा सीट को रंग नॉमिनेशन पेपर न्याब्रांग स्कूति पा ईटानगर वा लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरियट को मजा हुआ बाजाओ अलीगो ताई तागक बीजेपी कैंडिडेट मा वन्नी नॉमिनेशन पेपर फाइल हुआ ताहे वैलिड चो बाजाओ नाला रजून को काउंसिल ऑफ स्टेट्स ना इलेक्शन रंग वैलिडली नॉमिनेटेड डिक्लेयर हुआ बाजाओ अलीगर स्क्रूटिनी प्रोसेस पर श्रीमती तादर मीना रिटर्निंग ऑफिसर कम सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली लोंगमैन रोनरंग एआरओ ले एआरओ हेमा पवन कुमार सेन सीईओ कम ऑब्जर्वर अरुणाचल प्रदेश बेनियल इलेक्शन ले जॉइंट सीईओ लिकेन कोयो हे सबरे खैन का होन बाजो गामा जो चुठो कोएगा फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेमा 2026-27 फाइनेंशियल ईयर रंग नॉर्थ ईस्ट रीजन रंग मिलेट प्रमोशन हुआ रंग ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हेमा फंड हुआ लाभ अरुणाचल प्रदेश व नमसा डिस्ट्रिक्ट व पिंगबोटे हे नंग फॉक्सटेल मिलेट हमे पा फैन को बाजा अलीगा ठप्पा फाइनेंशियल ईयर खन को नमसा रोइंग ले पापुम परे डिस्ट्रिक्ट हे एको मजा नाले हक में रंगो को हमे प्रोसेसिंग ट्रेनिंग डब को हमे व बेकरी ले नूडल यूनिट हे रोसे रामिन ट्रेनिंग ए होना जा अलीगर प्रोजेक्ट पर डॉक्टर संदीप जंगहू डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस आरजीओ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटरशिप खन बजा नामे जा चोठो कोइका अरुणाचल स्टेट रूरल लेवलीहुड मिशन टावंग है BMMU इनिशिएटिव खन का मजा जा ठे रंग वो रंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले उद्यामे इंडिया रजिस्ट्रेशन कैंप होन वाजा अधिक ट्रेनिंग पर BMMU ट्रेनिंग हॉल ले वॉक थ्रू मार्केट टावंग नंग होन वाजा अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स व डीहक न्यू मारस किचन ले लोकल डीहक एंटरप्रेन्योर्स हे नुकमा रोग बिले मिजान हेमा कैंप को पार्ट कब वाजा ngale aja mong enterprises he malin register khon ba jaw nga ma jaw chotho ko ka ta jan nok te khobar ta ko jaw la thon ma ta
3: ade khabang se asu program ko chasan le lamnu cha ba ranya se chotat mangan

नमस्कार दोस्तों, नॉक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए मनोरंजन के सिलसिले को और भी आगे लिए चलते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

मेरे प्यारे दोस्तों, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पहला गीत आपने सुना दिल तो पागल है फिल्म से, और लीजिए इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को मैंने प्यार किया फिल्म से, एसपी बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

अरिजीत सिंह के गाए हुए इसी गीत के साथ ही बता दूं आपको कि कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है। चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का।

श्वेता बताना चाहेंगे आपको कि इस गीत को आप आनंद ले रहे हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में। ये भी बता दो एक बार फिर से आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर।

श्रोता, बर्फी फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि आगे हम लेकर आए हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

श्रोता, हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में पहला गीत आपने सुना जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, और इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का क्रांतिवीर फिल्म से।

दोस्तों, दिल धड़कने दो फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अब से बस कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

नमस्कार दोस्तों, आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।

19 अक्टूबर 1956 को जन्मे सनी देओल का वास्तविक नाम अजय सिंह देओल है। घर में उन्हें सनी कहकर पुकारा जाता था और फिल्मों में उन्होंने इसी नाम से एंट्री लेने की ठानी। धर्मेंद्र के सबसे बड़े बेटे सनी का एक भाई बॉबी देओल है और दो बहनें विजेता और अजीता हैं। दोनों बहनें अमेरिका में रहती हैं। सनी की दो हाफ सिस्टर्स ईसा और अहाना देओल है। 80 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में कई सितारों ने अपनी संतानों को बॉलीवुड में लॉन्च किया। धर्मेंद्र ने भी अपने बड़े बेटे सनी देओल को सन 1983 में बेताब फिल्म के जरिए लॉन्च किया और फिर इसके बाद क्या था श्रोता, फिल्म सुपरहिट रही और सनी देओल के कदम बॉलीवुड में मजबूती से जम गए। फिल्मों में लॉन्च करने के पहले धर्मेंद्र ने सनी को बर्मिंघम में अभिनय सीखने के लिए भेजा था। पढ़ाई के दौरान सनी अपने पिता धर्मेंद्र के जीन्स पहनकर जाया करते थे और दोस्तों पर रोब जमाते थे कि ये जीन्स मेरे पापा ने शोले फिल्म में पहनी थी। सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को बेहद चाहते हैं। धर्मेंद्र का वो इतना सम्मान करते हैं कि वो पिता के सामने ज्यादा बोल भी नहीं पाते। धर्मेंद्र को सनी अपना प्रिय अभिनेता मानते हैं। धर्मेंद्र की फिल्म ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास उनका सबसे पसंदीदा गीत है। अभिनेत्रियों की बात करें तो अभिनेत्रियों में सनी को तनुजा बहुत पसंद है। सनी पारिवारिक इंसान है और संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। वे अपने पिता और मां के बिना नहीं रह सकते, वो साथ रहना पसंद करते हैं। सनी देओल फिल्म में पार्टियों से अक्सर दूर रहते हैं और उनका मानना है कि पार्टियों में सारे लोग बनावटी होते हैं और झूठ बोलते हैं। शराब और सिगरेट से तो सनी दूर ही रहते हैं। सिल्वेस्टर स्टैलन को सनी अपना बेहद ही पसंदीदा कलाकार मानते हैं और रेम्बो सीरीज की फिल्में उन्हें बहुत पसंद है। सिल्वेस्टर स्टैलन से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने बॉडी बनाई। सनी ने उस दौर में अपनी बॉडी बनाई जब आमतौर पर हीरो दुबले पतले हुआ करते थे। उनका मजबूत शरीर देख ज्यादातर उन्हें एक्शन रोल निभाने को मिले और उन्हें भारत का आर्नोल्ड भी कहा गया। सनी को बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन हीरो में से एक माना जाता है। बेताब के बाद सनी की कई फिल्में फ्लॉप रही लेकिन अर्जुन, द खेत, यतीम जैसी फिल्मों में उनका अभिनय काफी सराहा गया। पाप की दुनिया 1988 से उन्हें दोबारा सफलता मिली और फिर उन्हें त्रिदेव वर्दी जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। 1990 में प्रदर्शित घायल ने सनी के करियर में अहम मोड़ निभाया। इस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय के बल पर स्पेशल जूरी अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जीता। सनी को जब घायल में शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो धर्मेंद्र बहुत ज्यादा खुश थे। धर्मेंद्र यह पुरस्कार जीतने में कभी कामयाब नहीं रहे। इसी तरह की और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आज हम सनी देओल से रिलेटेड इस कार्यक्रम के दौरान, यानी कि कार्यक्रम आज के कलाकार के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का जिसे हमने लिया है फिल्म चालबाज से।

घातक और राजा हिंदुस्तानी तथा गदर और लगान तीनों बार दोनों ही फिल्में सफल रही। 2001 में प्रदर्शित गदर एक प्रेम कथा सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट रही। कहा जाता है कि पिछले 15 वर्षों में इस फिल्म के सर्वाधिक टिकट बिके। गदर एक प्रेम कथा को प्रदर्शन के पूर्व ठंडी फिल्म माना जा रहा था और लगान को हॉट। रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर लगान की तुलना में गदर ने कई गुना ज्यादा व्यवसाय किया। दोस्तों, गदर में सनी का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन बेहद पसंद किया गया और माना गया है कि इस दृश्य को केवल सनी देओल ही विश्वसनीय बना सकते थे।

गदर फिल्म के इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक, कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद।

निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद श्रोता स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। आइए मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए लिए चलते हैं आपको कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।

0: श्रोता, गुमराह फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए, इस बार आपको लिए चलते हैं स्थानीय गीतों पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत की ओर।
1: नमस्कार मेरे प्यारे श्रोता मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपके रेडियो साथी गैर अत एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना गीत, और पहला गीत हम सुनते हैं पादी तादा की आवाज में अपतन गीत।

मोहब्बत की खूबसूरती ये भी है कि आप एक दूसरे से कितने भी दूर रहो, अलग रहो, फिर भी उनके लिए मन में अच्छी सोच रखना, उनके साथ बिताए पलों को याद कर खुश होना। अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत विरह में तड़पता प्रेमी का दर्द है, जो उन वादियों में आज अकेला है जहां अपनी प्रेमी के साथ वे कभी हसीन वक्त बिताया करते थे। तो चलिए सुनते हैं लम्युक लगो की आवाज में ये आदि गीत।

आप सुन रहे थे देशी जोंगलूजू और निहोन शोजू की आवाज में मीजी गीत। हमारे श्रोता मित्र सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, कई बार हम किसी खास के लिए अपने परिवार जिंदगी तक को भूल जाते हैं, पर अगर वही खास अचानक हमारी जिंदगी से चली जाए तो। श्रोता लीजिए पेश है न्योगम न्योरा की आवाज में मायूसी से भरा एक गालो गीत।

वैसे हम इंसानों को एक न एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना तो है ही, पर अगर कोई हमारे बीच से जल्दी हमें छोड़कर चला जाए तो वे हमें तो दर्द के सागर में डालता ही है, साथ ही उनके अपने कई सपने और ख्वाहिशों को भी अधूरा छोड़ जाते हैं। श्रोता, ये सुनते हैं ये दर्द भरा निशे गीत बिजनू नावम की आवाज में, और हम यही चाहेंगे कि कोई भी समय से पहले या बहुत जल्द इस दुनिया को न छोड़े।

के संग वांगदा द्वारा गाई इस गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह के एक और नए अंक के साथ हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरविंद FM 103.1 MHz। नमस्कार।

श्रोतागण, अभी आप सुन रहे थे कुछ आशा भोसले जी के गाने, और इसी के साथ हम वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी रेडियो साथी फ्लोरेंस शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, ये वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के साथ।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा वाणी। आइए इस बार आपको लिए चलते हैं पुराने मगर सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत की ओर।

श्रोता कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहूंगी आपको कि पहला गीत हमने पेश किया है आपके लिए कोहरा फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में।

श्रोता, एक बार फिर से बताना चाहूंगी आपको कि आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भूले बिशरे गीत का। और इस दौरान इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का आंधी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाजों में।

श्रोता, दोस्ती फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम हाजिर होंगे फिर कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम के साथ, यानी कि मुझे, आपकी दोस्त, आपके आरजे मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर के जी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की हस्तक्षेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ये कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, तेजस, ब्रह्मोस और आईएनएस विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांधकर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने, यहाँ आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी ही थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का

0: नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, यह बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है, वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी

0: जो तकलीफें एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं भी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, ना जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है।

0: यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
1: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारी सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर सेक्शन की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब

0: निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवने थे, भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली पर हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे, जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है, जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
0: बिल्कुल विकसित भारत, ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है आनंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है, कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं, वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिन के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा कि श्री मोदी के

0: में भारत चांद पर पहुंच गया है और अब वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टेलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right. The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
1: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: Earlier, the National Democratic Alliance today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India, under Mr. Modi's leadership, has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail Project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometres with 5 stations. Mr. Vaishnav said upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometres, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved 2 major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. The government has approved 22 new applicants under the third round of the Production-Linked Incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The approved applicants span key focus segments of the PLI scheme, including man-made fibre, MMF apparel, MMF fabrics and technical textiles, further strengthening India's position as a global hub for value-added textile manufacturing. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 enhanced capability global navigation satellite system jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. India has condemned the attack on the commercial vessel Setebello off the coast of Oman today. External Affairs Ministry said in a statement that of the 24 Indian crew on board, 21 Indians have been rescued so far and 3 Indians are reportedly missing. It informed that the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. And with that, we end this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। दुनिया भर से श्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई संदेश आ रहे हैं। विश्व नेताओं ने भारत की बढ़ती शक्ति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। तेहरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों पर जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर हिंसक दमन के लिए पाकिस्तानी प्रशासकों की निंदा की। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने समझौता करने में बहुत देर कर दी है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उधर ईरान ने कहा है कि रात भर हुए हमलों के बाद वह अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों का फिर से आकलन करेगा। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास ईरानी ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में उसके ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि बार बार युद्ध विराम उल्लंघन के बाद ईरान अमरीका के साथ राजनयिक संबंधों पर समीक्षा करेगा। ईरान ने केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह पर हमले की खबर दी है। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास और बाद में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर विस्फोटों की भी सूचना दी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से पूजा।
2: यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी हिस्सों में आज कई लंबी दूरी के हमले किए जिनमें सैन्य और ऊर्जा परियोजनाओं को निशाना बनाया गया। यूक्रेन रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हमलों में कई महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया गया जिनमें एक सैन्य कारखाना भी शामिल है, जिसके बारे में उन्होंने दावा।
2: कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दमन के लिए पाकिस्तान के प्रशासकों की हिंसक कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। संगठनों ने इंटरनेट बंद करने, अवैध गिरफ्तारियों और बल के प्रयोग का हवाला देते हुए स्थिति को गंभीर बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन ने वहां एक संगठन को आतंकवादी समूह घोषित करने के फैसले की निंदा करते हुए इससे संगठन की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। नासा ने अगले साल के अंत में होने वाले अपने अगले आर्टेमिस तृतीय मिशन के लिए 3 अमरीकी अंतरिक्ष यात्रियों और एक इतालवी अंतरिक्ष यात्री के नाम घोषित किए हैं। ये मिशन स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के चंद्रयानों का पहली बार कक्षा में परीक्षण करेगा। अमरीकी अंतरिक्ष यात्री आंद्रे डगलस, फ्रैंक रूबियो और रैंडी ब्रेसनिक तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के इतालवी अंतरिक्ष यात्री लुका परमिटानो आर्टेमिस तृतीय के चालक दल में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बुल्गारिया के सोफिया स्थित राष्ट्रीय ऐतिहासिक संग्रहालय का दौरा किया। श्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने हजारों वर्ष पुरानी कलाकृतियों के महत्वपूर्ण संग्रह का अवलोकन किया। डॉक्टर जयशंकर सोफिया की यात्रा पर हैं, जहां वे बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रेस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिंचियान को मात दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर से श्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई संदेश आ रहे हैं। विश्व नेताओं ने भारत की बढ़ती शक्ति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। तेहरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों पर जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।